कोठे ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी। यारो ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आप

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल दोस्तों। वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते। नाम क्या है आपका?
0: जी नमस्ते, मेरा नाम अक्षत है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: जी जीआर गारमेंट से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: जी गाना है कैसे जीऊंगा तेरे बिना।
1: कैसे जीऊंगा तेरे बिना?
0: हाँ
1: कैसे सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना। हेलो

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ए मेरे दोस्त लौट के आजा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: वेलकम। हेलो

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो,
3: गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग।
3: हेलो, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग मैम।
3: हाउ आर यू मैम?
2: मैम नाम क्या है?
3: यू मोनिका सवाई माधोपुर।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: बेबो मैं बेबो दिल अपना लाई ले लो जी ले लो।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आरबी गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कलम सॉन्ग।
2: तेरा मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।

0: कराना ना तुझसे बिछड़ कर जिंदा हूँ, जान बहुत शर्मिंदा। इस गाने के तुरंत बाद लगा लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।
1: कौन सा गाना लगाना है सर? नाम क्या है सर आपका?
0: मैंने आपको नाम बताया, मेरा एजी कार रेलवे 40 क्वार्टर गंगापुर सिटी, रेलवे 40 क्वार्टर गंगापुर सिटी से बात कर रहा
1: है सर। कौन सा
0: गाने के बोल रहे हैं? ये तुझसे बिछड़ कर जिंदा हूँ, चांद बहुत शर्मिंदा है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13-111.
4: मैं जो गाना बताऊँ वो चला देना।
5: हेलो, नाम क्या है आपका?
4: राजकमल।
5: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
5: कौन सा गाना सुनना चाहो?

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: दीपक मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आ रहा हूँ बाबा।
0: हेलो,
2: तेरे सिवा शाह बता हम कहाँ जाएं।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: योगेश जांगड़े जुनेकर छत्तीसगढ़ से।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गंगा जमुना सरस्वती से सुना देंगे, साजन मेरा उस पार है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो मैम, राधे राधे।
0: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम मेरा राम सिंह है, गंगापुर सिटी नसिया कॉलोनी से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं इस मूवी का, प्रेम बंधन मूवी है।
0: हाँ जी,
1: इसका गाना है मैं तेरे प्यार में पागल।
0: उसी से सुना रहे आपकी सर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:41 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। आप मेरी साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: तो।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: नमस्ते सर। हाँ जी
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: राम गुजर बोल रहा
1: हूँ।
0: क्या थे,
1: कौन सा गाना
0: सुनोगे? राम गुजर क्या थे,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: के बोल है
1: कौन सा सर?
0: प्यार क्या है किसी ने न जाना, प्यार क्या है किसी ने न जाना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपको। सर

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
4: गुड मॉर्निंग मैम।
5: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
4: मेरा जय किशन।
5: कहाँ से बात कर रही?
4: मैं गंगापुर सिटी, जीआर गारमेंट्स।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
4: ये जोरा जबी खून तेरी आंखों का।
5: कौन सा?
4: जोरा जबी।
5: जोरा जबी मूवी है?

0: नहीं हाँ सॉन्ग है एक
1: अच्छा ओके सर सुना रहे हैं आप माइक करेगा ना वीडियो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू मैम
2: नहीं प्यार करता है तो कभी कभी मैं तुझसे भी मिल लूंगी।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: जी नमस्ते।
1: नाम क्या है आपका?
0: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, तहसील सिरोन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
1: सर कौन सा खाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है टीवी नंबर वन।
1: जी
0: जेट की दोपहरी में गर्मी लगी है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: हेलो बीएस लाइव।
0: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लैला मजनू का।
0: कौन सा वाला?
1: उसने हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जो भी मेरे

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: हेलो नमस्ते मैम।
2: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम मैम धन सिंह है, मैं सूरज बोल रहा हूँ।
2: सर आवाज कट रही है, थोड़ा दोबारा बोलो। हेलो
3: सूरज बोल रहा टोक्सी से बोल रहा मैम।
2: हाँ जी, गाना कौन सा सुनना चाहोगी?
3: सूरज बोल रहा टोक्सी से बात कर रहा मैम।
2: हाँ जी, गाना कौन सा सुनना
3: चाहोगे? धोखे प्यार के धोखे।
2: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
3: ये

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सिंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सिंगापुर।

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।
1: मेरी राधे राधे।
2: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी जी गारमेंट।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं गाना तुमसे बना मेरा जीवन।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, नाम क्या है आपका?
1: निशा शर्मा, गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: कैसे कहूँ मैं वो यारा, ये प्यार कैसे होता है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपको, सरप्राइज करूँगा मैं।
1: थैंक यू मैम।
0: यू वेलकम।
2: लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: ओवर।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: कंगना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: कंगना पर चेटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: प्लीज कहो ना कहो या

0: सर नमस्ते।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: सर ठीक है, आप कैसे हो?
1: ठीक है, आपको फोन लगा रहे थे तो फोन कट गया है, बड़ी खुशी हो रही है।
0: और सर कौन सा गाना?
1: नाम है दहली।
0: कौन सा?
1: दहली, एक अधूरी सी मुलाकात।
0: गाने के बोल है सर ये?
1: जी।
0: एक अधूरी सी बात,
1: एक अधूरी सी मुलाकात।
0: फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
5: हेलो
6: हेलो,
5: हाय सर, नमस्ते।
6: नमस्ते
5: सर, नाम क्या है आपका?
6: नाम सत्यनारायण।
5: कहाँ से बात कर रहे हो?
6: गंगापुर सिटी।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
6: गाना सुना कितने देर में सुना देगी मैडम? कितना प्यार है।
5: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
6: ऋषि कपूर का गाना है।

0: हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग जी, नाम क्या है आपका?
1: आरती वर्मा नाम है, लाल चौक से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं मोर बनाइए राधा रानी।
0: ओके मैम, सुना।

0: आपका
1: नाम? तो मोहम्मद यासीन है, मेहनत किया नहीं है मैं।
0: कोई बात नहीं सर, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: बाल से कर रहा हूँ मैं नाम में। तो
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम गाना है सोचो ना जरा सोचो ना,
0: सोचो ना जरा सोचो ना।
1: हाँ सोचो ना जरा ये सोचो ना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फर्म। पाल से या भोपाल से सर?
1: हाँ
0: भोपाल से।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है?
0: राधे राधे बेटी।
1: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
0: आशाराम जी का नाम है, गंगापुर सिटी मिर्जापुर अम्बेडकर धर्मशाला से बोल रहा हूँ बेटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहिए सर?
0: दुनिया की टाटा टा।
1: ओके सर, सुनाइए गाना।
0: थैंक यू।

0: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? थोड़ा तेज बोला, आवाज नहीं आ रही।
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं चाहूँ किसी और को तो चाहे यारा सॉन्ग।
0: ओके जी। हेलो,

0: फ्रेंडशिप बैंड्स?
1: एक्चुअली मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था, तो मैं हर कलर का एक फ्रेंडशिप बैंड ले आया।
0: ला दो, ये लो।
2: मैं

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: मोनिका
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा।
1: मन सुना रहे आपको सुनाई करेगा।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर 89.6 पे रेडियो डीएस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
6: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने 89.6 रेडियो डीएस पर। नए तरानों के बीच में कुछ खट्टी मीठी बातें और थोड़ी सी वार्तालाप।

0: पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं।
7: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:08 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में कुछ भेंट वार्तालाप सुनते हैं।
8: मैं निशा सैनी, आप सुन रहे हो 89.6 डीएस। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक जो मूल्यों का आधार है। विषय है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह केवल एक कहावत नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन है। हमारे शास्त्र में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमणते तंत्र देवता है। अर्थात जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है और जहाँ उनका अनादर होता है वहाँ सभी शुभ कार्य निष्फल हो जाते हैं। नारी केवल परिवार की सदस्य नहीं है बल्कि वह सृष्टि की जननी, संस्कारों की वाहक, समाज की नर्मदा और राष्ट्र की शक्ति है। किसी भी समाज की प्रगति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वहाँ महिलाओं को कितना समान अधिकार मिलता है। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान, भारत की संस्कृति में नारी को सदैव उच्च स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ नारी को माँ के रूप में पूजनीय माना गया है, देवी के रूप में सम्मान दिया गया, शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, ज्ञान के रूप में संस्कृति माना गया, धन और समृद्धि के रूप में लक्ष्मी माना गया, साहस और शक्ति के रूप में दुर्गा माना गया। यह दर्शाता है कि भारतीय परंपरा में नारी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। नारी सृष्टि की आधारशिला, नारी के बिना सृष्टि की संकल्पना भी संभव नहीं है। एक बेटी के रूप में वह घर में खुशियाँ लाती है, एक बहन के रूप में स्नेह का प्रतीक होती है, एक पत्नी के रूप में जीवन संगिनी बनती है, एक माँ के रूप में नई पीढ़ी का निर्माण करती है। यदि नारी न हो तो परिवार, समाज और मानव सभ्यता का अस्तित्व समाप्त संभव नहीं है। माँ के रूप में नारी दुनिया का सबसे पवित्र और महान रूप माँ का माना जाता है। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, जीवन के संस्कार देती है, प्रेम और त्याग की प्रतिपूर्ति होती है, कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभालती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए अनगिनत त्याग करती है, वह स्वयं कठिनाइयां सह लेती है लेकिन अपने परिवार को कष्ट नहीं होने देती। इसलिए कहा गया है कि माँ के चरणों में स्वर्ग का वास होता है। बेटी घर की खुशियों का आधार, बेटियां परिवार की मुस्कान होती है। आज की बेटियां शिक्षा में आगे है, विज्ञान में आगे है, खेलों में आगे है, प्रशासनिक सेवाओं में आगे है, सेना और सुरक्षा सेवाओं में भी योगदान दे रही है। बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है, इसलिए बेटी को बोझ नहीं बल्कि परिवार का गौरव समझना चाहिए। नारी और शिक्षा किसी भी समाज की उन्नति महिलाओं की शिक्षा पर निर्भर करती है। जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षित महिला बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, परिवार का बेहतर मार्गदर्शन करती है, समाज में जागरूकता फैलाती है, अधिक आर्थिक विकास में योगदान देती है। इसलिए नारी शिक्षा राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार है। नारी और राष्ट्र निर्माण देश के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, शिक्षक है, सैनिक है, पुलिस अधिकारी है, न्यायाधीश है, जनप्रतिनिधि है। उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की है। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान मिले। नारी शक्ति के प्रेरणादायक उदाहरण भारत का इतिहास और वर्तमान अनेक प्रेरणादायक महिलाओं से भरा हुआ है। सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया और हजारों लड़कियों के जीवन में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाया। रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने साहस और वीरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। कल्पना चावला, उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम विश्व भर में गौरवान्वित किया। मेरी कॉम, उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त की। इन महिलाओं ने सिद्ध किया कि अवसर मिलने पर नारी किसी भी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि प्राप्त कर सकती है। महिलाओं के सम्मान का महत्व, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहां प्रेम बना रहता है, परिवार में एकता बनी रहती है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है। वहीं जहां महिलाओं का अपमान होता है, परिवार में तनाव बढ़ता है, सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है, विकास बाधित होता है। महिलाओं का सम्मान केवल उनका अधिकार ही नहीं बल्कि समाज की आवश्यकता भी है। वर्तमान समय की चुनौतियां, हालांकि

आज महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, फिर भी अनेक चुनौतियां मौजूद है। दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, शिक्षा से वंचित होना, कार्य स्थल पर उत्पीड़न, इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए समाज और संस्कार दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। समाज की जिम्मेदारियां, हम सभी की जिम्मेदारियां है कि बेटियों को सम्मान अवसर दे, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दे, महिलाओं के अधिकार का सम्मान करे, दहेज और भेदभाव का विरोध करे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जब समाज महिलाओं को सम्मान देगा तभी वास्तविक विकास संभव होगा। परिवार में महिलाओं का सम्मान कैसे करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें, बेटा बेटी में भेदभाव न करें, शिक्षा और रोजगार के अवसर दें, घरेलू जिम्मेदारियों में सहयोग करें, उनकी उपलब्धियों का प्रोत्साहित करें। नारी सम्मान और भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि नारी केवल सम्मान की पात्र नहीं बल्कि समाज की आत्मा है। नव रात्रि में हम देवी की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तविक पूजा तभी है जब हम अपने घर और समाज की महिलाओं को भी समान सम्मान दें। यदि हम देवी की आराधना करते हैं तो हमें हर महिला में उसी शक्ति का स्वरूप देखना चाहिए। निष्कर्ष, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह वाक्य केवल धार्मिक संदेश नहीं बल्कि एक सामाजिक सत्य है। नारी परिवार की शक्ति है, समाज की प्रेरणा है और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। जिस घर में महिलाओं को सम्मान मिलता है वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और संस्कार सुंभे आ जाते है। आइए हम संकल्प लें, महिलाओं का सम्मान करेंगे, बेटियों को सम्मान अवसर देंगे, भेदभाव का विरोध करेंगे, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। अंत में एक संदेश, नारी सम्मान की सच्चा धर्म है, नारी सुरक्षा ही सच्ची संस्कृति है और नारी संस्कृति शक्तिकरण की राष्ट्र की वास्तविक प्रगति है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ प्रेम, शांति, समृद्धि और देव तत्व का वास होता है। धन्यवाद, नमस्कार।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: तुषार

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।

दोस्तों वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

चुका है, 3 बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टोन करें 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी याद है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: कोक स्टूडियो भारत,
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
4: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

तो वक्त हो चुका है 4:15 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38°C और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों थोड़ी देर बाद आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ जी सर नमस्ते।
1: सर नमस्ते जी, सवेता लगानी फोन चौधरी बोल रहा हूँ।
0: सर सुबह 11 बजे तक कॉलिंग खुली रही थी, आपका कॉल ही नहीं आया था सुबह।
1: अच्छी बात है, सुनाई आज के दिन में।
0: हाँ जी सर, धन्यवाद आपका, आपने सुना बहुत अच्छा लगा हमें भी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: बीच बीच में ये बातें सुनाते रहा करो।
0: जरूर सर, वो 1 बजे
1: का।
0: हाँ जी
1: 1 बजे और सुनाई।
0: हाँ सर 1 बजे से चालू कर देते हैं हम हमारी वार्तालाप।
1: बहुत बढ़िया।
0: हाँ जी बताइए।
1: गम सहती है चुप रहती है।
0: गम सहती है चुप रहती है।
1: जी जी
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो मैं जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है सरगम और गाने के बोले डफली वाले डफली बजा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन
0: जी। वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैम मेरा नाम पायल है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: शानू आजकल शीशा बड़ा छेड़ता।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम नरसी गुर्जर है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं परफेक्ट हॉस्टल से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: तेरी यादों की चादर उड़े।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम उमेश शर्मा है जी।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: मैं गंगापुर से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: एक मिनट, तेरी यादों की चादर ओढ़े।

0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: कोमल,
0: कहाँ से बात करूँ?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: जब दिल न लगे दिलदार हमारे गले आ जाना।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सर नमस्ते।
1: हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्ते
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: संजय राम गुजर बोल रहा हूँ। नाम गुजर क्या थे?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाने के बोल है दुनिया हसीनों का मेला, दो देख दो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। सर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम रविंद्र मीणा।
1: कहाँ से? कौन सा गाना सुनता होगी?
0: तेरी गली से घर छोड़ गए।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।
2: बस जो तमाशा करन आ गया, चला जाए तो चला।

0: हाँ
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: तमन्ना।
1: कहाँ से बात करे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तेरे विच वसदी जान के तुझे।
1: ओके।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: उदास मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: अख मेरे यार की दुखी।
1: कौन सा सर?
2: अख मेरे यार की दुखी।
1: अख मेरे यार की।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कई बार इतिहास की चीजें जानने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार क्यों जाना मैंने ये ट्यून इन कर रखा अपनी 89.6 रेडियो डीएस। और एक जमाने में लोग केचप यानी टमेटो सॉस केचप को बेचते थे एज ए मेडिसिन, दवाई के रूप में बिकता था केचप। हाय हाय हाय हाय, इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपके कानों से खून निकल रहा हो तो फिर रुक जाओ, मैं आपके कानों का इलाज करता हूँ। बैक टू बैक कुछ अमेजिंग गाने आपके लिए प्ले करने वाला हूँ 89.6 रेडियो डीएस पे।
2: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो डीएस।

देखो, अगर आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन अगर कोई भी है, तो फिर ये खबर आपके लिए। ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस, और टिल डेट 2024 चालू हो चुका है। और कौन सी खबर है भैया? हमारे बगल में, पड़ोस में जो यूएस है, यूएस का प्रेसिडेंट आज तक जो भी बना है, वो कभी भी अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे नहीं थे। यानी किसी का बड़ा भाई था, किसी का छोटा, किसी की बड़ी बहन, किसी की छोटी बहन। अगर आप यूएस जाके वहाँ के प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहे हो, तो फिर आज का शो मेरा यही तक था। फिलहाल टाइम टू गो बैक टू बैक अमेजिंग कुछ गाने आपके लिए प्ले करके जा रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: भगवत गीता की एक बात मुझे बार बार याद आती है। मैं हूँ आरजे खुशी और हर दिन की तरह आज की भी शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ। अब सोचे तो पानी में कोई स्वाद होता ही नहीं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक लाकर दे, आइसक्रीम लाकर दे, पिज्जा बर्गर लाकर दे, तो क्या आपका मन भरेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको उस वक्त केवल पानी की जरूरत होगी। जो काम पानी कर सकता है वो दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पूरी तरीके से हार जाए, आपको कहीं से संतुष्टि ना मिले, तो केवल और केवल भगवान का नाम आपका सहारा बनता है। तो उस नाम को लेने से कभी ना चूके और जब मौका लगे तब उस नाम को जरूर ले। हरे कृष्ण राम, जो आपको प्रिय हो। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: लोग कहते हैं कि एफडी करने में ज्यादा फायदा नहीं रहा है। मैं हूँ आरजी खुशी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी एफडी करना कोई बुरी बात नहीं है। मान लीजिए कि आपके साथ में 1 लाख रुपए हैं, अगर आप 1 लाख की एफडी करेंगे तो हाँ नुकसान है, लेकिन अगर 1 लाख को आप 10-10-10-10 हजार में बांट दें और फिर अलग अलग एफडी करें तो सोचिए कितना फायदा है ना। तो एफडी इतनी भी खराब नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बस उसका सही इस्तेमाल करना हमें आए। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी ही देर में।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: घर तो हम साफ करते ही रहते हैं, खुद भी नहा लेते हैं, लेकिन फिर भी पता है कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया हम तक पहुंच ही जाते हैं। मैं हूं आरजे खुशी। पता है क्यों? क्योंकि इस मोबाइल को हम कभी साफ नहीं करते, जो ईयरफोन हम अपने कान में लगाते हैं उनको कभी साफ नहीं करते, और इन्हें साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, जिस भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उन सब की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी घर की और हमारी खुद की सफाई, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम इन्हीं चीजों का करते हैं। जैसे गेट खोलते वक्त जो डोर नॉब है उसका साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज है जिसको हम बार बार हाथ लगाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसका भी साफ होना बार बार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज बाकी सफाई के साथ साथ क्यों ना इन चीजों की भी सफाई की जाए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: पसंद बजना चाहिए गाना।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस रेडियो डीएस
2: बस मजना चाहिए
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: पसंद। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। सिनेमा के इतिहास में देवानंद पहले एक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। देवानंद अपनी फिल्मों के साथ ही जीने के अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देवानंद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। फिल्म स्टार बनने की चाह में अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और सिनेमा का स्ट्रगल शुरू किया। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया के साथ उनका अफेयर था। यह प्यार इतना गहरा था कि जब घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि देवानंद ने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी, वो भी फिल्म के सेट पर ही। फिर अलगाव भी हुआ और भी कई मशहूर अभिनेत्रियों से भी देवानंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्रियां जिंदगी में आई लेकिन देवानंद साहब अकेले ही रहे। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। देवानंद साहब को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज पत्रिका खरीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से दुकानदार रोज देवानंद के लिए पत्रिका छाट कर अलग से रख देता था और कभी कभी मुफ्त में भी दे देता था। इसी दौरान उस पत्रिका वाले की दुकान पर देवानंद ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरुदासपुर आ रहे हैं। तब वो वहां गए भी थे, वो उन्हें देखना चाहते थे लेकिन दूर से ही देख रहे थे। तो ये उनका फिल्मों के प्रति आकर्षण था और उनका प्रेम था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: कठारी
1: है मीठी छुरी।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। देवानंद जी का एक किस्सा है कि खुद का पेट पालने के लिए उन्होंने अपना स्टैंप कलेक्शन भी बेचा था। जेब में 30 रुपए लिए आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देवानंद साहब सपनों की नगरी मुंबई में आए। भरी दोपहरी में फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने भी जाया करते थे। समय गुजर रहा था लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देवानंद खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए थे। जब उन्हें भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक भी रुपया नहीं मिला। भूख और काम की इसी लालसा ने उन्हें स्टैम्प कलेक्शन के एल्बम को बेचने को मजबूर कर दिया, जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिन गुजारे। फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे सफरनामे में 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: राणा जी खबर पक्को है वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
1: रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो देश गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेड दोस्त आकाश, और आज बात करेंगे बालिका शिक्षा क्यों जरूरी है। नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो किसी भी समाज, राज्य और देश के विकास की नींव बालिका शिक्षा है। कहा जाता है कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यही कारण है कि बालिका शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। बालिका शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षित बालिका अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती है तथा जीवन में निर्णय लेने में सक्षम होती है। वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। शिक्षा के माध्यम से बालिकाएं स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होती है। एक शिक्षित महिला अपने बच्चों को बेहतर देखभाल कर सकती है, जिसमें सबसे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और शिक्षित बनती है।

नमस्कार श्रोता, हूँ मैं हूँ आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हमारे पसंदीदा FM रेडियो। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप और बढ़ता तापमान लेकर आता है, ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना फायदेमंद होता है। सबसे पहले दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, प्यास लगने का इंतजार न करें। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और ताजे फलों का सेवन भी फायदेमंद होता है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच तेज धूप में निकलने से बचें। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो छाता, टोपी या गमछे का उपयोग करें। खान पान में हल्का और पौष्टिक भोजन शामिल करें। अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन कम खाएं। तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसे मौसमी फल शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गर्मी का असर उन पर जल्दी पड़ सकता है। तो श्रोताओं, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप गर्मियों में स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। इसी संदेह के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सुनते रहे अपना पसंदीदा FM रेडियो।

0: मुनी
1: भाई उधर ब्याह हो गया।
0: इधर
1: एम्स्टरडैम।
0: आई वांट माय गर्ल बैक, लेट्स गो एम्स्टरडैम।

0: ओए लवर,
1: तू के है नहीं।
0: अच्छा जी, मैं कहा फिर सुनाएगा?

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त आकाश, और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।